0: था तुमसे कल भी सामना कर तो जानोगे दिल वाला ना दिल है कोई तब तो मानोगे होगा तुमसे कल भी सामना कर तो जानोगे दिल वाला ना
1: इन्हीं मिनल फैमिल हिंदी पारल गली